लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना जिंदगी फिल्म से। 1964 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही मुरली की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग और उस भोर को और भी सुहाना बना देता है।

सुरैया की आवाज़ से सजी ये रचना दिल लगी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1949 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना।

किशोर कुमार की आवाज़ से सजा ये गीत मशाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना। आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

0: ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಆತಂಕ ಬೇಡ. ರೋಗ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ? ಹೌದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬಿಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅನಿಮಿಯಾ, ಬಾಯಿ, ಸ್ತನ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಬಗೆಯ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
1: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7:30. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಡೈಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ
2: नमस्कार. ग्लासगो की ठंडी फिजाओं में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होता जा रहा है. राष्ट्रमंडल खेल 2026 के 5वें दिन भारत के खाते में आए 6 पदक. ये पदक सिर्फ पदक नहीं बल्कि 4 साल की कड़ी मेहनत, पसीने और त्याग की कमाई है. हालांकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी. 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है.
3: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे. और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है. और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं. एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे. और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं. कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष भले ही पदक में ना बदला हो. तो आइए शुरुआत करते हैं 5वें दिन का पूरा लेखा जोखा.
2: कॉमनवेल्थ खेलों का 5वां दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया. ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया. ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया. 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया.
4: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये है. और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं. मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया. मैं इसमें बहुत खुश हूं.
2: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
5: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव. जो उनके पापा जो है दीपक यादव जी, एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है, हमारे आदरणीय सर थे. उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया. पहले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व

0: फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट करे, उसका पूरा श्रेय वहाँ के हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुंचाई है सर।
1: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का छठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठा कर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 केजी में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 केजी वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
2: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, कुसारे जैसे सितारों से पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन एथलीट थे, आदर्श राम, ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन एथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे। लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्रीशंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे। लॉन्ग जंप में ही भारत के सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे इस सीजन में। अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.7

0: 7 मीटर ही कूद सके।
1: आई फिनिश फोर्थ इन माय ग्रुप एंड इट वाज अ बिग टू बिग जंप्स इन द लास्ट एंड इट वाज अ स्क्रैच बट यू नो बिगर थिंग्स इज कमिंग ऑन वेडनेसडे सो स्टे ट्यून्ड।
0: पुरुषों के 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड एक के मुकाबले में हीट वन में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
2: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें दो स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए पांचवा स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, दो बार के सिवाय रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है। लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल चार भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और तीन भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीत कर पदक पक्का करने से बस एक बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्ड लिया ने
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
4: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
5: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित के आधार पर हार बैठे।
2: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिमनास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में महिला वॉल्ट फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजनड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे छठे स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
2: आइए अब जाने पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 सेकंड का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
6: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Game 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8.

0: point in his first set, and in second set he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
1: अब बात आती है 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, ऋतु पूल बी के तीसरे मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हारकर बाहर हो गई।
2: निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सिराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
1: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
4: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ರ ಡೈಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.

0: हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
4: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल

0: कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश हैं हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमन वेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद, हिंदुस्तान ने बताया है।

0: Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
6: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
7: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
8: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी

जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद

0: करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके, और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी,
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का

0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
1: जी
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आश्रोताओ अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
7: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
7: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
7: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
7: लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
8: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
8: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
8: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
8: अच्छी? और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
8: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूँ।
0: जी।

0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
1: दौड़ने की प्रतियोगिता होने वाली
2: है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
3: दीदी लता।
4: जी दीदी।
2: क्या ये लता?
4: जी दीदी।
2: अरे नहीं।
4: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
2: अच्छा,
4: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया। सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
2: अच्छा
4: जी दीदी।
2: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है ठीक।
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से।
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इस पे हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और चाहे मैं ही क्यों ना हूँ कर सकता है भला।
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा।
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
3: दादा। कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
2: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: वर्षादूनानां आपराधिकहीनानां छात्रप्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायच्छत्। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षापत्रप्रकटनविरोधि संशोधनविधेयकमालक्ष्य सञ्जातः विचारविमर्श।
1: एयर इंडिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एंड स्पोक प्रतिरूपं प्रवर्तितम्। अनेन तावत् पंजाब राज्यं 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यैः सह योक्षते। झारखंड राज्ये 6 प्रमुख गणनायकैः सह 16 माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण 18 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराध प्रकरणेषु ईशून्य FIR पंजीकरण प्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिण जापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूकंपः

0: ಕೆಲವರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಒಲವಿನ ಆಲಾಪ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು 7:45 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: ಘಿರೆ ಹೇ ಮನ್ ಭಾರಿ ಹೇ ಔರ್ ಕೋಯಿ ರಾಸ್ತಾ ನಜರ್ ನಹಿ ಆ ರಹಾ, ಯಾದ ರಖೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇ. ಟೆಲಿಮಾನಸ್ ಕೆ ನಿಶುಲ್ಕ ನಂಬರ್ 144-16 ಪರ್ ಕಾಲ್ ಕರೆ, ಕಹೀ ಸೇ ಭೀ ಕಭೀ ಭೀ 24 ಘಂಟೆ ಯಹ ಸುವಿಧಾ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೇ. ಯಹಾಂ ಆಪ್ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ ಜಾತಿ ಹೇ, ಸಮಝಿ ಜಾತಿ ಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ಸಹಿ ದಿಶಾ ದಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ಆಪ್ ಅಕೇಲೆ ನಹಿ ಹೇ, ಮದದ್ ಬಸ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ ದೂರ್ ಹೇ.
2: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ವಿಶಾಲ್ ಶರ್ಮಾ. मुख्य समाचार. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया. महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया. जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा. ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं. मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है. अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी. अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले छह दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान

0: राज्य जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
0: ओडेसा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे

0: ನ ನೀವು ಆಲಿಸುವರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
2: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: नमस्कार. थैंक यू.
2: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%.
2: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई. इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज सपाट स्तर पर खुले. दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्दिवसीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड मार्जिनली लोअर टुडे. सेंसेक्स डिप्ड बाय 70 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,766. निफ्टी ड्रॉप बाय 11 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,985. The broader market at the NSE displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index rose nearly 0.1%, while the small-cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया. एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.9% की बढ़त दर्ज हुई. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% लुढ़क गए. बीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1

0: श्रेया घोषाल की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। शायर ने कहा, नैना बोले तो दिल की कहानी समझ में आ जाए, प्यार हो, इंतजार हो या फिर शिकायत, सब
1: तुम ही है। वो अगर आप पहले सत्र, दो तीन सत्र में देखें उसी आज के में, तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव था, पर मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में, पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में, जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ, चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है। और उसी लिए जो गेंस फर्स्ट हाफ में थी वो गेंस न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा उन सेंसेक्स में हुआ है। पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज के जो तेल की जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में, वो नोटिसेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का, वो ग्लोबल डेवलपमेंट को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है।
2: पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो लगातार 5 दिन तक गिरावट आई, कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला कारोबार के नज़रिए से, खरीदारी काफ़ी हुई, लेकिन आज बड़ा नपा तुला रवैया देखने का मिला निवेशकों का।
1: उसका कारण ये है कि जो कल की जो रिकवरी थी बहुत ही शार्प रिकवरी थी, और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि उसके कल जो है वो तेलों के दाम गिरने लगे, क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान किया था फ्राइडे को कि वो शायद ये जो युद्ध को और भी आगे ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे, शायद किस तरह से एस्केलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मार्केट का जो सिग्नल जो था वो पॉजिटिव लगा मार्केट को, तो इसीलिए सारी काफ़ी गेंस आई। और उसके साथ का तेलों के दाम $94 था, वो करीबन आकर 84 में आ गया, आज भी वही चीज़ हुआ, तेलों के दाम नीचे आ रहे हैं, रुपया इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आज की जो स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वो जो साउथ कोरिया में जो और एशियन मार्केट्स में जो चिप मेकर्स की के लेकर जो हंगामा जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है।
3: There are two aspects to my question. One is information technology stocks went up by 3.32%, the Nifty IT index, and we saw the shares rising between 4.5% and 3.9%, short covering in this sector. And you know, these tech stocks, their earnings, the revenue guidance seems to be quite good, including the net profitability, and their earnings are in foreign exchange as well. And there's also the question of the rupee to the dollar, and the dollar index is at 101.561. And what we are seeing right now is also action by the central bank at the same time, because they are saying that the inflows of FCNR, foreign currency non-resident accounts, have actually gone up by $32 billion, because you know the interest on these fixed term deposits, which is for 1 to 5 years, is between 3% and 7.4%. So it appears that the foreign exchange earnings of IT companies is a factor in the short covering that we're seeing right now, while at the same time you're also seeing that the rupee is strengthening, and the government is also saying that the central bank is saying that you also have healthy foreign exchange reserves. How do you see pair the rupee to the dollar, while at the same time also look at the IT index?
1: Well, what is happening right now is at one level, you are seeing that India's external sector is getting the benefit of some of the policy measures that were taken a few weeks ago, which is why the FCNRB deposits are expected to flow in. Many of the private sector banks, even the public sector banks, are reporting decent amount of flows coming in. So as a result, India's balance of payment deficit, which was earlier expected or

0: जो जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
1: इम्पैक्टफुल तो ज़रूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में, FII से पुल आउट ज़रूर होगा
0: जी।
1: और स्टॉक मार्केट को उसको उसके जो जो डेवलपमेंट जो है इम्पैक्ट है उसको संभालना पड़ेगा
0: जी। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है।
2: FMCG sector, we're seeing that the rains are back in the month of July after deficient rains in the month of June. We are seeing in agriculture the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
1: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted. And if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well. But if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
2: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that, you know, capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty Index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
1: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
0: आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है। जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई। वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। एकेबी, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
1: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है। जून का महीने का नंबर है ये
0: जी।
1: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
0: जी।
1: तो मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम एक सर्ज देखते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं, और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है वो उसमें ज़रा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है, पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस आईआईपी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आशाजनक
0: है। इसमें पावर सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
1: जो ये जो पावर की जो आईआईपी में जो आप देख रहे हैं वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
0: जी।
1: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है ज़्यादातर कंपनियाँ वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है, तो उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर वो है।
2: जस्ट माई क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव द फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
1: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple's mobile phone manufacturing, through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread, and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
0: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे। इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। ये इस साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया। ताइवान का ताइएक्स 4.6% से ज्यादा टूट गया। जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा। एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट एक बड़ा नंबर है, बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला, तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है, आने वाला है?
1: ये मुनाफा वसूली नहीं है, ये जो एग्जुबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो है उनकी एक बहुत बड़ी रिविजन हुई है। उस रिविजन से जो जिस डिमांड के तरिए स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक धक्का आया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर, और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है।
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz, where 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
1: Well, it's very difficult to estimate or project

0: what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texas crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And so therefore, that's the way it will go on.
1: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,41,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी। एकेबी कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है और जो भी जिस तरह की स्थिति है उनका कैसा असर उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। डिमांड बढ़ने वाली है और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन है डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इनके जो जो जो येलो मेटल्स जो हैं इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और उनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
2: एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end marginally down. Sensex drops 70 points. Nifty settled at 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year. And most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Lok Sabha took up the public examinations prevention

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार जी। हाँ, दिन की हलचल थम चुकी है। देखिए कहीं आसमान की तरफ देखिए जरा, कहीं चांद रात को आसमान से झांक तो नहीं रहा। तारे खामोशी से अपनी कहानी तो नहीं कह रहे। हवाओं में घुली है एक मीठी सी खुशबू। जी हाँ, आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की भागदौड़ को हम और आप यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने दिल की धड़कनों को थाम कर पुरानी यादों, मोहब्बत के कहे अनकहे सिलसिलों और एहसासों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो तो याद बनकर धड़कन में बस जाते हैं, जैसे चांद का बदलना और मौसम का बदलना, लेकिन एहसास का ना बदलना, क्योंकि ये प्यार वाले एहसास कभी नहीं बदलते। किसी की मुस्कान, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो इस खामोश चांदनी से सजी रात में चलिए हम और आप सुनते हैं ये नगमा।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ बातें होठों तक आकर भी कहीं नहीं जाती, इसीलिए दिल उन अल्फाज को कहीं ना

कहीं सहारा देता है अल्फाजों के माध्यम से या फिर गीतों, गजलों या शायरी के माध्यम से। एक खत में सिर्फ स्याही नहीं होती बल्कि उसमें होता है इंतजार, धड़कने, ढेर सारे अनकहे जज्बात लिखे होते हैं उसमें। और जब कोई रात ऐसी हो जहाँ पर चांदनी रात हो या खामोश रात हो, तब ऐसे में दिल के पन्ने जब हम पलटने लगते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए अपने दिल की बात खत में लिखी है तो ये नगमा ज़रूर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, मिला एक और नया सिलसिला कहानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनो

हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना।

शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले, हम ही को मुड़ के न देखा, हम ही से कुछ न कहा, इस एहतियात से हम जिंदगी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले।

0: अगर बात मोहब्बत की जाए तो हमेशा अल्फाज से शुरू नहीं होती, कभी कभी सिर्फ दो नजरें टकरा जाती हैं और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। और ऐसे में जब किसी की आंखों का ख्याल आ जाए तो चांदनी रात में भी दिल मुस्कुराने लगता है और तारे भी कहीं ना कहीं हसीन लगने लगते हैं। ये उन चंचल निगाहों में एक ऐसा जादू होता है जो पल भर की मुलाकात को उम्र भर की याद बना देता है।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: इस गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

लिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गोयन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्यार बहुत है, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, इस वक्त मुझे तुझसे सरोकार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर, उस पार भी होगा मगर इस पार बहुत है। अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है।

अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अगर यूं ही दिल ये सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी ना कभी दिल किसी एक ऐसे इंसान के करीब बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ रहकर जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो प्रेम है, सम्मान है, और वो एक ठंडक है जो हर गर्मी से राहत देती है। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिल्म है दादी माँ, आवाज़ें हैं मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि दिल की सबसे सच्ची बातें अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं, आंखें कहती हैं। कभी एक नज़र जब मुस्कुरा उठती है तो कभी वही नज़र दिल के सभी राज भी पढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आंखों की तलाशी ले रही है, हर धड़कन में एक ही नाम शायद ढूंढ रही है। तो अगर आपकी निगाहें भी किसी एक ऐसे चेहरे पर ठहर जाती हैं तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खामोशी से आप पर अपना असर दिखा रही है। तो इश्क की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें ही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आंखों की तलाशी पर एक ऐसा ही गीत। फिल्म है दिल और मोहब्बत, आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब की।

फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं। हर घड़ी जागता रहता है दुखों का सूरज, नींद आती है मगर रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, दुनिया को कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ दिल को एक पनाह चाहिए होती है, जहां शिकायतें नहीं होती, जहां सिर्फ अपनापन होता है, ऐसे एक रिश्ते की लोगों को दरकार होती है, जहां चांद अपनी चांदनी को खामोशी से अपनी बाहों में समेट लेता है, वैसे ही हर दिल ये चाहता है कि कोई अपना हो जो हमारे दिल की बातों को सुने, एहसास को छुपा ले। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, फिल्म है ममता, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाज़त, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बात खूब कहा है किसी ने कि कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए।

आपके लिए कैसा गीत जिसने आपकी उस तन्हाई, बेचैनी और अनकहे जज्बातों को समेट लिया है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि उन दास्तानों से बढ़कर दास्तान है, वो एहसास है इसमें जिसमें घुल कर आप अपनी ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ये धुन जो हमारे रूह तक उतर जाती है, सुनते हैं कुछ अधूरे ख्वाबों को, कुछ अनकही बातों को और कुछ मीठी यादों को याद करते हैं।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है ना, तो दिल को ना वो उम्र याद रहती है, ना दुनिया की कोई रस्म। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उस पल को थोड़ा और जी लिया जाए। और जब दिल बेकाबू होने लगता है, तब प्यार से कई लफ्ज, कई बातें इन दिल से उठती हैं। तो आज एक ऐसा ही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बड़ी ही मासूमियत से कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं, जिसमें मीठी बेताबी भी है और पहली मोहब्बत की वो कशिश, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। और इस गीत को सुनते ही लोगों की जबान पर, होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। तो चलिए सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ। तेरी यादें हैं शब बेदारियाँ हैं आँखों को शिकायत जानता हूँ। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ।

वो आएगा दिल से दुआ तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत दिल आशना तो करो, मिलेगा कोई बन के उनवान भी, कहानी की तुम इब्तदा तो करो, तुम्हारे करम से है ये जिंदगानी, मैं बुझ जाऊंगा तुम हवा तो करो, हजारों मनाजिर निगाहों में है, रुकोगे कहाँ फैसला तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो।

और आज सुरमई में चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं, तो अब चलते चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मनहर और सुखविंदर की आवाज़ में।

और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हरजिंदर कौर स्नैच में 101 और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम के साथ कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of the convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said, the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Basuri Swaraj and Tejaswi Surya of BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP, SP, MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiv Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP K.C. Venugopal, S. Venkateshan of CPIM, Guru Murthy Madala of YSRCP, RJ D's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Mohammed Bashir, JMM's Vijay Kumar Hansdag, CPR MP K. Subharan, JDS MP M. Malesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi and Harsimrat Kaur Badal of SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the house to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. Three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. State governments of Maharashtra, Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against students who have recently participated in the protests on the NEET paper leak issue. The move is in line with the center's guarantee that no legal action will be taken against students who participated in the protests. Meanwhile, in consonance with the Supreme Court order, the government of West Bengal has decided not to take coercive measures against students who participated in the protests. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries at his residence earlier yesterday. The Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. At the Commonwealth Games, India's Srihari Nataraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland yesterday. Para swimmers RVVBK Burigina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle as 13th final. Athlete Vishal Tekke progressed to the semi-final of men's 400-meter race. In boxing, Indian boxer Priyag Hungus stormed into the women's 60kg semi-finals after defeating Scotland's Niamh Mitchell in the quarter-finals. She joined fellow pugilist Preeti Pawar in assuring a medal for India. With a win, the Indian boxer progressed to the semi-finals and moved within one victory of securing a place in the gold medal bout. And that is the end of this news bulletin.

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

जब दिलों में सच्चा प्यार बस जाता है तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। मोहब्बत अपने भरोसे हर इम्तिहान को मुस्कुराकर पार कर लेती है।

सच्चा इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दिल की सबसे खूबसूरत इबादत है। इसमें चाहत भी है, सम्मान भी है और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ कोई अपना हो। एक सच्चा हमसफर हर खुशी को दोगुना और हर कम को आधा कर देता है।

प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। किसी अपने की मुस्कान और साथ ही जीवन को हर पल जीने का नया कारण दे देता है प्यार। और जब प्यार जीवन में आ जाए तो जिंदगी उसके बिना अपने आप ही पूरी सी लगने लगती है।

कभी कभी किसी की एक झलक ही दिल की धड़कनों को नई रफ्तार दे देती है। लगता है जैसे रात की खामोशी में, लगता है जैसे रात की खामोशी में चांद खुद मुस्कुराने चला आया हो।

दिल की बातें शब्दों से कम एहसासों से ज्यादा कही जाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगे तो हर धड़कन एक मीठी दास्तान बन जाती है।

और समय भी कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं जल्द वापस आऊंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत दुनिया में सीफेयरर्स यानी नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। BIMCO ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो गई है। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार रामलाल और गीतकार हसरत जयपुरी।

आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नई इमारत से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार बपी लहरी और गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना मन फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार सजीव दर्शन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते अगला गीत फिल्म यस बॉस से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, संगीतकार जतिन ललित, गीतकार जावेद अख्तर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखी हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries for the government at his residence yesterday. During the meeting, Prime Minister Modi reviewed the future action agenda of ministries and departments, dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the centre of governance. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill yesterday, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system.
3: 24, you brought the legislation. After 2 years, you are bringing again a legislation. We are ready to pass the legislation, but I still believe that if you didn't have any sincerity to address the concern of the students of this country, yeah, concern of the addressing those examination failures, this legislation is not going to serve any purpose.
1: Several other members took part in the debate. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the house to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. The bench permitted the Delhi government to continue investigations into FIRs registered but said no coercive action be taken against protesting students during the pendency of the proceedings. In Jharkhand, security forces have achieved a major breakthrough in the anti-Naxal operations. Top Noise leader and Politburo member Mr. Besra, who carried a bounty of 1 crore rupees, has been arrested from the Dhanbad-Giridih border. Regional committee member Mehnat Alias Mochu, who carried a reward of 15 lakh rupees, Maoist cadre Gaurav and two villagers were also apprehended during the joint operation. The action was carried out by the Cobra, CRPF and Jharkhand police based on the specific intelligence inputs. Amnesty International has called for an independent and transparent investigation into reports of the use of lethal force against protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, by Pakistani forces, while urging Pakistani authorities to restore communication services and allow media and independent observers access to the region. In a statement, Amnesty International's acting regional director for South Asia, Isabel Lassie, reacted to security forces using lethal force against protesters in Rawalpindi during the first day of the regional election. In the Commonwealth Games, India's Harjinder Kaur added another medal to the country's tally at the Commonwealth Games 2026, clinching the silver medal in the women's 69kg weightlifting competition. Moreover, Indian boxer Madangbum Jadumuni Singh assured the country of at least a bronze medal after outclassing Mwale Mingo in the men's 55kg quarterfinals in Glasgow. And that is the end of this news bulletin.

समय हो गया है 5:11 और 9 सेकेंड और ये समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

सत्य हमारे जीवन की शक्ति है, शिव कल्याण का मार्ग, और सुंदरता हमारे श्रेष्ठ कर्मों में बसती है। जब विचार सच्चे और कर्म पवित्र हों, तब जीवन स्वयं एक सुंदर गीत बन जाता है।

ज़िंदगी की असली बहार तब खिलती है जब हम अपनी मुस्कान, अपनापन और खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है और यही जीवन की सबसे सुंदर दौलत है।

जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान जगाने में है।